ब्रह्मा मुरारी स्थिपुरन्तकारी धानो शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्ति।

0: थप जानकारीका लागि प्रोप्राइटर विष्णु खड्का, सम्पर्क नम्बर 9840741318,
1: 9805614652।
2: रोलपाली मुस्कान।